0: साहिबा कदरदान,
1: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
2: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।
3: चाहिए मुझे कैश, चाहिए कैश, चाहिए मुझे कैश, चाहिए
4: पैसा फेंक, तमाशा देख ना।